इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियाँ कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: श्रोताओं, कबीर साहब मन की मूर्छा और लापरवाही को झकझोरते हुए कहते हैं, कबीर मन गाफिल भया, यह जो तुम्हारा मन है यह संसार के भोगों, ऐशो आराम और झूठे रिश्तों में उलझकर पूरी तरह गाफिल यानी अंधा, लापरवाह और सो गया है। सुमिरन लागे नाहीं, और इसी लापरवाही का नतीजा है कि इसका मन अब सुमिरन यानी उस परमात्मा के नाम, ध्यान और आत्मचिंतन में लागे नहीं यानी लगता ही नहीं। जब भी ध्यान करने बैठो यह संसार की बातें सोचने लगता है। कबीर इस लापरवाही की भारी कीमत को समझाते हुए अगली पंक्ति में कहते हैं, घनी सहेगा सांसना। कबीर चेतावनी देते हैं कि अगर तुम यूं ही सोते रहे तो भविष्य में तुम्हें घनी यानी बहुत ज़्यादा सांसना यानी भारी कष्ट, पश्चाताप और मानसिक यातनाएं सहनी पड़ेंगी। जम की दरगाह माही, कहाँ सहनी पड़ेंगी? जम की दरगाह यानी काल के क्रूर थपेड़ों में, प्रकृति के चक्र में और मृत्यु के उस दरबार में जहाँ पाई पाई का हिसाब होता है, वहाँ तुम्हारी यह सांसारिक चालाकी और बहानेबाजी काम नहीं आएगी। यह दोहा प्रमाद के आध्यात्मिक संकट को प्रकट करता है। वेदांत और पतंजलि योग सूत्र में प्रमाद और आलस्य को साधना के मार्ग का सबसे बड़ा विघ्न माना गया है। गाफिल होने का अर्थ यह मान लेना कि यह संसार ही सब कुछ है और मेरे पास जीने के लिए अनंत समय है। जब मनुष्य इस भ्रम में जीता है तो वह आत्मा की खोज को हमेशा कल पर टालता है। जम की दरगाह और सांसना कोई भौगोलिक नरक नहीं है, बल्कि यह उस मनुष्य की भीतरी छटपटाहट है और तड़प का प्रतीक है जो मनुष्य के समय यह देखता है, जो मृत्यु के समय यह देखता है कि उसने पूरा जीवन कौड़ियों के बदले गंवा दिया और आत्मिक रूप से वह बिल्कुल खाली हाथ रह गया। कबीर समझा रहे हैं कि इस भीतरी नरक से बचने का एक ही उपाय है, तात्काल सजग हो जाओ। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा खुद से पूछिए कि हम किस बात से बेफिक्र होकर बैठे हैं। हम धन इकट्ठा करने में, मकान बनाने में, दूसरों को नीचा दिखाने में और व्यर्थ के अहंकार में इतने खोए हैं जैसे हमें यहाँ हमेशा हमेशा रहना हो। जब भी शांत बैठना है या ईश्वर का नाम लेने की बात आती है, हमारा मन ऊब जाता है क्योंकि हमारा मन गाफिल हो चुका है। आज कोशिश कीजिए इस भीतरी नींद को तोड़ने की। होश का एक डंडा छींटा अपने मन पर मारिए। इस पल की कीमत को पहचानिए। जब तक आंखें खुली हैं, इस मन को जबरदस्ती ही सही, पर उस राम नाम के सुमिरन में करुणा और सेवा के मार्ग पर लगाइए। जब आपकी चेतना जागृत होगी तो काल का कोई भी डर आपको छू नहीं पाएगा और आप इसी जीवन में परम आनंद के साम्राज्य के भागीदार बन जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: शिक्षण, माहिती, ज्ञान, मनोरंजनाने सजलेले सदाबहार कार्यक्रम ऐकायला विसरू नका। रेडिओ मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
2: बा तथागता, अनेक विचारांची जागृती, नैराश्य, आलस्य, काम याचे आक्रमण तू परतावून लावलेस, तरी देखील तुझे ज्ञान भरकटवण्यासाठी माराने वारंवार केलेला हल्ला तू परतवून लावलास. उपेक्षेने, तटस्थतेने, समतेने शील संवर्धित करून तेव्हा अनेक दिवसांच्या तुझ्या ज्ञानाधिष्ठानाला फलप्राप्ती झाली आणि संपूर्ण विश्वाच्या आकलनाचे ज्ञान तुला झालेस. तू बुद्ध झालास, सम्यक संबुद्ध, माणसाच्या दुःखाचे मूळ तुला आकलले आणि सापडला त्यावरील उपायही. एकात दुसरी शृंखला असणारा प्रतित्य समुत्पाद सिद्धांत तू मांडलास आणि लोकमंगलकारी प्रवास आर्य अष्टांगिक मार्गानं तू दाखविलास. अंगुली निर्देश केलास तू निब्बाणाकडे आणि मानवी जीवनाची समाप्ती परिनिब्बाणाकडे. परिनिब्बाण म्हणजे मृत्यू. पण मृत्यूचा शोक का करावा? मृत्यू स्वीकारतानाही तटस्थता, गांभीर्य, स्थिरता आणि दुःख विनाश तू शिकवलेस आणि मृत्यूचे सार्थक झाले परिनिब्बाणामुळे. आयुष्याची समाप्ती समाधानाने, आनंदाने, कर्तव्यपूर्तीने स्वीकारण्याचे धाडस आणि क्षमता असते परिनिब्बाणामध्ये. ना आसू, ना माया, ना मोह, ना लोभ, असते स्थिरता आणि तटस्थता निब्बाणात. परिनिब्बाणाकडे प्रवास करताना मानवी आयुष्यात प्रत्येकाच्या येत असतात संकटे कितीतरी. होत असतो संघर्ष आणि संघर्षाच्या लढाया कितीतरी. उसळतो आगडोम दुःखाचा कितीतरी. ढासळली ढाळली जातात आसवे प्रियजनांच्या विरहाने, नातलगांच्या मृत्यूने, लाभप्रद नसणाऱ्या स्थितीने, भावविवश व्याकुळतेने, अज्ञानाने. आयुष्यात माणसाच्या ऋतून बसले आहे भय. भय कारण दुःखाचे तसेच अज्ञानाचे. म्हणून आकलनाने, ज्ञान साधनेने अज्ञान अंधकार होतो नाहीसा, त्याबरोबरच भय देखील. बा तथागत, ध्यान साधनेला तू ज्ञान साधना बनवलीस आणि ध्यान साधनेतील कर्मकांड केलेस नाहीसे. ध्यानातील इष्टदेवता बाद केलीस. ध्यानातील लोभी वृत्ती बाद ठरवलीस. ध्यानातून फलप्राप्तीची आशा समाप्त केलीस आणि जोडलेस विज्ञान तू ध्यानाला. विशेष प्रकाराने पाहणे, निरीक्षण करणे, चिंतन करणे तटस्थतेने, तसे एकाग्रतेने चिंतन मनन करणे आणि संवेदना तपासणे, अशा विज्ञानवादी भूमिकेतून तुझी विपश्यना उभी राहिली. विपश्यना म्हणजे विशेष प्रकारांचे निरीक्षण होय. यामध्ये नाही कोणतेही कर्मकांड किंवा अंधश्रद्धा. विपश्यना म्हणजे एकाग्रता होय. विपश्यना म्हणजे कोणत्याही आलंबनाशिवाय तटस्थतेने अनुभवली जाणारी क्रिया आणि प्रतिक्रिया होय. विपश्यना म्हणजे समस्येचा शोध घेणे आणि कारणांची चिकित्सा करणे. विपश्यना म्हणजे शरीर आणि मनाची वैज्ञानिक जाणीव होय. विपश्यना म्हणजे मनातील विचारांना तटस्थतेने पाहणे होय. विपश्यना म्हणजे प्रज्ञेला अनुभवली जाणारी सम्यक समाधी. विपश्यनेला होताना दिसतो विरोध. काही ठिकाणी पुरोगामित्वाच्या नावाने म्हटले जाते की हा प्रयोग आंबेडकरवादातील आक्रमकता कमी करण्याचा. आणखी केला जातो आरोप असाही की विपश्यना बुद्धाने

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। जब पीछे मुड़कर देखा, पास्ट को जब भी देखते हैं, तो ना चाहते हुए भी वो सारी बातें हमें याद आ जाती हैं, या फिर हम जीवन में जब चल रहे होते हैं, कभी भी अचानक अनजाने ही पास्ट की बातें ट्रिगर हो जाती हैं, और फिर जहां हम खड़े हैं वो पास्ट ही हमारा प्रेजेंट बनने लगता है। अगर पिछली कड़ी आपको याद हो तो हमने बात की थी कि कैसे हमारा पूरा गुजरा हुआ कल आज भी, तभी हम कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स, क्योंकि मैंने ही उसे अपना प्रेजेंट बना लिया तो फिर वही तो आगे सामने आएगा। हमने एक मुद्दे पर बात करनी चाही थी और वो था जब किसी लव्ड वन की, किसी करीबी की, जो अपनी देह छोड़ देते हैं, वो नहीं रहते जीवन में, या फिर कहीं कोई ऐसा अपना होता है जो छूट जाता है, कहीं और चला जाता है। तो ऐसे दो एक्सपीरियंस हैं जो कि जिनसे पार पा पाना, या जो वो बार बार अनजाने ही आते हैं, उन्हें कैसे हैंडल करना है, और इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी, अगर पास्ट की हम बात कर रहे थे तो कई अनुभव तो छोटे छोटे होते हैं जिसको करके कि हम हैं, और खुद ही अपने आप को हील करना, ये हमने समझा, ना हम किसी और को बदलेंगे ना सिचुएशन बदलेगी, और वो गुजर गया, ख़त्म हुआ। लेकिन कुछ सिचुएशंस, जैसे कि कोई हमारा बहुत करीबी और उसकी डेथ हुई, वो आज भी उतना ही बड़ा घाव है, और हमने किसी तरह से अपने आप को कवर अप किया है। मतलब इतने लोग इतना समझाते हैं, इतनी बातें करते हैं, कवर अप कर लेते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी भी जी रहे हैं, सबके साथ भी जी रहे हैं, काम पर भी है, लेकिन वो खाव तो भरता नहीं है।
1: डेफिनेटली आई थिंक जीवन में हमें बहुत सारे, जैसे हम शुरू से देख रहे हैं, उतार चढ़ाव देखने, लेकिन ये जो एक परिस्थिति होती है, डेथ ऑफ अ फैमिली मेम्बर और अ क्लोज फ्रेंड, ये शायद जीवन का सबसे बड़ा एग्जाम पेपर होता है, जिसमें तो हमने कहा कि दर्द तो नेचुरल ही है, वी नेवर एवर थॉट के कोई और ऑप्शन भी है। यस, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। जीवन में वो सिचुएशन है जिसको पार करने के लिए बहुत ताकत चाहिए, लेकिन इसमें भी अगर हमें राइट नॉलेज है, विजडम है, और फिर साथ साथ पावर भी है, तो इसको भी हम क्रॉस कर सकते हैं। सबसे पहली बात हम देखते कि उसमें भी अगर हम देखें कि जब हमारा बच्चा, बिकॉज आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, लेकिन उसमें भी अगर किसी के बच्चे ने, बच्चे की डेथ हुई है, यंग अनटाइमली डेथ, तो शायद उसको पेरेंट्स के लिए फेस करना बहुत डिफिकल्ट होता, और वो अपने आप को ये कह ही देते कि बाकी पूरी जीवन तो दर्द में ही बीतनी है। यहाँ तक कि वो दर्द इतना ओवरपावर कर जाता कि कहते हमें जीना ही नहीं है, हमारे जीने का कोई पर्पस नहीं है। उनको अब जो प्रेजेंट फैमिली मेम्बर्स हैं वो कोई नहीं दिखाई देते, उनका कुछ नहीं लग रहा, बस वो एक उसमें ही इतने दर्द में चले गए हैं कि कहते आई डोंट वांट टू लिव एनीमोर, आई लॉस्ट माय पर्पस ऑफ लिविंग। ऐसे समय में भी हम अपना ध्यान कैसे रखें, बिकॉज हमारा पूरा जो बात है वो यही कि अपना ध्यान कैसे रखना, क्योंकि अब तो वो जिसका हम ध्यान रख रहे थे
0: वो भी नहीं रहा,
1: वो नहीं है, तो वो दर्द में अब मुझे अपना ध्यान कैसे रखना,
0: अब मैं ध्यान अपना रखना ही नहीं चाहती। You know, like that is what I'm saying. Ki it like I don't want to live. I don't want to do anything. You know, and उसके बावजूद भी मैं करती हूँ, उठता हूँ, काम करती हूँ और चीजें करती हूँ।
1: राजयोग में जो सबसे fundamental बात जो हमें समझ में आती कि मैं कौन हूँ, ये एक fundamental realization है जो हमारा सारा perspective change कर देती कि ये शरीर है, नाम है, परिवार है, रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन इन सब के लिए हमने कहा मेरा, यू नो, मेरा नाम ये है, मेरा प्रोफेशन ये है, ये मेरे रिश्ते हैं। शरीर के लिए भी हमने कहा मेरी आंखें, मेरा कान, मेरा शरीर, आज मेरा शरीर बहुत दर्द हो रहा है, तो ये सब कुछ मेरा मेरा कहने वाला, वो मैं कौन? तो वो हमें समझ में आता कि वो एनर्जी है जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते, चैतन्यता जिसको कहते, द लिविंग, द बीइंग पार्ट, क्योंकि हम कहते हैं हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो वी आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंटिटीज, वन इज द बॉडी, द ह्यूमन, जो ह्यूमस वर्ड से निकलता मिट्टी, एंड बीइंग इज एनर्जी, कॉन्शियसनेस। तो ये जो बॉडी है ये मेरी है, और मैं कौन? वो शक्ति। जब हमें समझ में आता कि आई एम एनर्जी, देन आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. So it is eternal. जब ये समझ में आता तो देन आई अंडरस्टैंड कि मैं वो चैतन्य शक्ति जिसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में हम आत्मा कहते, सोल कहते, स्पिरिट कहते, मैं इटर्नल हूँ. तो डेथ किसकी होती है? क्योंकि पूरा जीवन हम मृत्यु के भय में जीते हैं. लेकिन जब मुझे समझ में आता कि मैं तो इटर्नल हूँ, आज दिन तक भी हम सुनते आए आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जो जल नहीं सकता, जो मर नहीं सकता, जिसका विनाश नहीं हो सकता. आई एम इटर्नल एंड सो इज एवरी सोल. सो एवरी सोल इज इटर्नल. तो मृत्यु का कॉन्सेप्ट क्या है? वॉट इज डेथ? इज वेन आई द सोल लीव वन कॉस्ट्यूम, वन सेट ऑफ रिलेशनशिप्स, वन पर्टिकुलर सीन, एंड देन आई हैव टू शिफ्ट. तो अब हम अगर इसको देखें कि डेथ मीन्स के वो आत्मा एक, क्योंकि वी आर सीइंग डेथ ऑफ अ फैमिली मेम्बर, वो आत्मा जो कल तक मेरे साथ थी, उसका मेरे साथ एक जिसको हम कहें कार्मिक अकाउंट था. हम कहाँ आते हैं, बर्थ और डेथ कैसे डिसाइड होता है? कई लोग बोलते कौन डिसाइड करेगा कहाँ जन्म हुआ और कब तक उस शरीर में रहना और फिर कब वहाँ से चलना है. इट इज़ बेस्ड ऑन माय कार्मिक कनेक्शंस. हम जिस परिवार में हमारा जन्म होता, जिन लोगों के हम कनेक्शन में आते, इट इज़ बिकॉज उन आत्माओं के साथ मुझ आत्मा का कार्मिक कनेक्शन है, जिसको हम कहें एनर्जी के लेन देन है. दिस इज बेस्ड ऑन माय पास्ट कार्मिक कनेक्शंस. तो जिन आत्माओं के साथ हम आज हैं, हम पहले भी उनके साथ कभी थे. जब हम उनके साथ पहले थे, हमारा एक पर्टिकुलर अकाउंट क्रिएट हुआ था. अब हम फिर उनको मिलते, फिर हमारा एक अकाउंट है. लेकिन जैसे ही अब मेरा ये अकाउंट जो था वो सेटल हो जाता, आई हैव टू लीव. आई कैन नॉट स्टे वन मिनट मोर आफ्टर दैट. तो जब हमें ये समझ में आता वो आत्मा मेरे कॉन्टैक्ट में आई फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, फॉर सेटलिंग अ पर्टिकुलर अकाउंट, उसके बाद द सोल कैन नॉट बी इन माई कॉन्टैक्ट एनी मोर, क्योंकि उसका वो अकाउंट फिनिश हो गया एंड इट हैज टू गो समवेयर एल्स, जहाँ उनका एक
0: नया अकाउंट
1: है. वो सोल अपनी जर्नी पे है. यू नो इट्स लाइक एक ट्रेन में हम जा रहे हैं, हम सब अपनी अपनी जर्नी पर हैं. ऐसा नहीं होगा कि सब लोग एक ही स्टेशन से चढ़ें और सब लोग एक ही स्टेशन पे उतरे. हर एक की जर्नी अलग अलग है. तो हर एक का बोर्डिंग पॉइंट वो भी अलग अलग है, हर एक का उतरने का स्थान वो भी अलग अलग है, क्योंकि हर एक अपनी अपनी यात्रा पर है.
0: But I didn't want to finish this account. See?
1: No, it's not about I wanting to finish this account. I'm not talking about my account. It's about the other soul's account. अगर आपका अकाउंट मेरे साथ चार दिन का है, तो उसके बाद आपने पांचवें दिन दूसरी जगह जाना ही जाना है, क्योंकि पांचवें दिन आपका कनेक्शन दूसरी जगह. लेट्स से आप हफ्ते में तीन दिन हमारे साथ शूट करते हैं, लेकिन चौथे दिन आपको कहीं और शूट पे जाना है. आपकी वो कमिटमेंट है. अब मैं को तीन दिन आपके साथ बहुत अच्छा लगा, मैं सोचूं चौथे दिन भी आप यहीं आ जाएं, तो मेरे चाहने से आप यहाँ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आपका कमिटमेंट अब चौथे दिन कहीं और है. अब मैं जो यहाँ पीछे बैठी, आप तो चले गए कहीं और. अब मेरे पास चॉइस है कि मैं इसको एक्सेप्ट करूँ कि आपका कमिटमेंट, आपका अकाउंट कोई और है, या मैं दर्द में रहूं कि वो क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है आज मेरे साथ.
0: सबसे बड़ी बात ये भी, फिर ये भी रहता है कि तो इसका मतलब उनको जब वो चले गए हम याद ही नहीं रहते, यू नो, बिकॉज़ कमिटमेंट पूरा हुआ.
1: हम उनको याद नहीं रहते, ये उनके लिए अच्छा है ना. चलिए अगर हम एक पल के लिए देखें, आई मेट वन मदर जिनका 21 साल का बेटा ने एक्सीडेंट में डेथ हुई. तो वो बहुत अच्छा पास्ट का अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे. बेटा दूसरे देश में था, तो कहा हमारा इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था कि यहाँ अगर मैं अपसेट होती, उसको वहाँ पता चलता, या उसके साथ कुछ होता तो मुझे यहाँ, इतना जैसे हमारा यू नो वो बॉन्डिंग था. तो कहते हम तुरंत फोन करते एक दूसरे को, सब ठीक है, कुछ हुआ है? एंड शी सेड इनवेरिएबली वी वर राइट कि दूसरे के साथ कुछ ना कुछ हुआ था. तो इतना हमारा कनेक्शन. अब वो बच्चा, वो आत्मा कहीं और चली गई है. ये मदर बहुत रोती है, रोज रोती है इतना. तो आई जस्ट आस्क्ड हर वन थिंग. आई सेड कल तक आपका और उस आत्मा का इतना कनेक्शन था ना कि आपकी एक थॉट उधर तक पहुंचती, उसकी एक थॉट आप तक पहुंचती. अब वो आत्मा का कॉस्ट्यूम चेंज हो गया है. सी व्हाट वी से, इट्स ओवर, इट्स डेथ, इट्स फिनिश्ड. नो, इट्स जस्ट द सोल हैज चेंज्ड अनदर कॉस्ट्यूम. लेकिन क्या वो कनेक्शन फिनिश हो गया होगा? क्या वो एनर्जी एक्सचेंज फिनिश हो गया होगा? अगर आप आज कहीं और भी चले गए, क्या आपको भूल गए? आपको याद नहीं आएगी? आएगी. अब क्या होगा? लेकिन पहले वो दूसरे देश में था, उसको अगर याद आता या उसको कैच होता, ही कुड कॉल. एक मिनट के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्रिएट द सीन इन फ्रंट ऑफ यू कि वो आत्मा अब एक दूसरे शरीर में है, प्रोबेबली इन द वूम्ब ऑफ द मदर और अ वेरी लिटिल बेबी, जस्ट कैन नॉट कॉल यू बैक.
0: But will he remember? It's not the remembrance.
1: It is not remembrance. शुरू में तो remembrance है.
0: हाँ.
1: एक आत्मा जब उस शरीर में है, आप देखो एक बच्चे को शुरू में सारा पास्ट याद होता है.
0: It's like
1: कभी वो हंसता है, कभी वो रोता है. क्या? क्योंकि नेचर है ना, जैसे हमें पास्ट भूलता जाता है. तो नेचर बहुत सुंदर ऐसे बनी हुई है प्रकृति कि जैसे जैसे बच्चा बोलने की स्टेज पर आता, 2-3-4 साल, 3 साल तो हो जाते, तब तक उसको पास्ट भूल जाता क्योंकि प्रेजेंट की इन्फॉर्मेशन लेयर उसके ऊपर सारी कोड होते जाते. तो कई बच्चे ऐसे मिलते हैं ना जिनको पास्ट याद होता. तो वो किस एज में होते हैं? वो 19, 20, 25 की एज में नहीं होता कभी भी.
0: 5, 6, 7.
1: क्यों? क्योंकि मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग थी कि वो जो बात 2-3 साल तक भूल जानी चाहिए थी वो 4-5-6 साल तक भी याद है और वो उसका वर्णन फिर करना शुरू करते. लेकिन जब वो आत्मा माँ के गर्भ में है, वो तो अभी अभी आई है, या वो एक एकदम छोटा बच्चा, वो तो अभी उसको सब याद है, सारा कुछ याद है और वो पास्ट को याद करके ही रोता और हंसता है. बच्चा कभी भी प्रेजेंट से बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है. हम हॉस्पिटल में बच्चे को क्रेडल में देखते, हम उसके साथ प्यार से बात करते, हमें लगता है वो हमें देखकर डजंट इवन नो मी, डजंट इवन रिकग्नाइज मी, वो कुछ और याद करके हंसता और रोता है. अब यहाँ वो माँ है, यहाँ वो आत्मा है. हम उसको बच्चा नहीं कहेंगे, अब वो आत्मा है. यहाँ अगर पहले आपका एक एक दर्द वो ऐसे कैच करता था, अब नहीं करेगा. अब करेगा या नहीं करेगा? अभी भी करेगा. यहाँ आप इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, किसको याद करके रो रहे हैं? उसको याद करके रो रहे हैं. लॉ ऑफ एनर्जी
0: किस बॉडी में था? किसी और कॉस्ट्यूम में था.
1: पर कॉस्ट्यूम को नहीं हम याद करते ना, एनर्जी का जो एक्सचेंज है वो कॉस्ट्यूम और कॉस्ट्यूम के बीच नहीं, वो आत्मा और आत्मा के बीच है. दैट्स व्हाट वी सेड इज रिलेशनशिप. अब जब हम रो रहे हैं, हम पेन की एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, एनर्जी ट्रैवल करने वाली है. कहाँ ट्रैवल करेगी?
0: उसी पे जाएगी,
1: उस आत्मा के प्रति जिसके लिए वो क्रिएट की गई है. सो यस, इट इज वेरी डिफिकल्ट. यस, हम नहीं इस, हम कहते हैं हम इस दर्द से नहीं निकल सकते. लेकिन अगर हम अपने आप को प्यार से और लॉजिकली समझाएंगे कि जब वो आत्मा यहाँ थी तो मैं चाहे कुछ भी हो जाता उसको दर्द ना होने देती, मैं कुछ भी कर जाती उसको अपने दर्द से दूर करने के लिए. और आज मैं ही बैठ कर क्या भेज रही हूँ? मैं दर्द भेजते जा रही हूँ, भेजते, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब वो मेरे सामने नहीं है तो मुझे पता नहीं चल रहा, तो मेरे ऊपर उसका फर्क नहीं पड़ रहा. इफ आई हैव द रियलाइजेशन दैट ऑल दिस पेन दैट आई एम क्रिएटिंग इज गोइंग टू दैट सोल, आई विल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ. अपने लिए नहीं ध्यान रखना चाहते ना, ठीक है, वी से मुझे नहीं ध्यान रखना अपना, आई डोंट वॉन्ट टू बी फ्री ऑफ पेन. अपने लिए नहीं, उनके लिए सही,
0: जिसके लिए हम जीवन भर वैसे ही करते आए हैं,
1: जिनके लिए, जो हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट थे, उनको इतना दर्द पहुंच रहा है. अच्छा, बच्चा अगर थोड़ा बड़ा होता जाता, वो हमें याद नहीं रख, वो याद नहीं करता, भूल जाता है. लेकिन एनर्जी जो हम भेज रहे हैं, वो एनर्जी वो फिर भी रिसीव करता है. एनर्जी ऐसी चीज है, आप जिसके प्रति क्रिएट करो, इट इज ट्रैवलिंग टू दैट पर्सन.
0: तो मतलब इसका मतलब वो जो सोल जिसने जहाँ जन्म लिया, जो भी है, उस तक वो वाइब्रेशंस तो पहुंच रहे हैं.
1: ऑलवेज, ऑलवेज, ऑफ कोर्स. सी, इट्स लाइक दिस, आप मेरे लिए जो भी एनर्जी क्रिएट करोगे,
0: तो देन अननोइंगली
1: आई एम सेंडिंग सो मच पेन.
0: यस, और वो पेन में चला जाता होगा बच्चा, मतलब वो जहां पे भी होगा.
1: सी हाउ इट हैपेंस, क्योंकि हमारे अंदर आज इतनी ताकत नहीं है कि हम अपने आप की प्रोटेक्शन कर सके. हमने यही देखा ना, आपने दर्द भेजा तो मेरे भी दर्द में चली जाते हो. अनलेस आई वर्क वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ कि आपकी एनर्जी औरों की एनर्जी मुझ पर इन्फ्लुएंस नहीं करे. लेकिन मोस्ट ऑफ अस आर नॉट डूइंग दैट वर्क. तो मोस्ट ऑफ अस आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाटएवर एनर्जी इज बीइंग सेंट टू अस. तो जब हम उन सब लोगों की एनर्जी से इन्फ्लुएंस होते जो हमारे आसपास है, अगर कोई कहीं और भी है लेकिन वो जो एनर्जी भेज रहे हैं उसका भी इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर,
0: और उस बच्चे को तो ये पता भी नहीं चलेगा ना, बिकॉज वो सामने हो तब हमें समझ में आता है कि इसकी एनर्जी ये आ रही है, वो उसका ये आ रहा है, लेकिन वो तो द चाइल्ड वोंट बी इवन नोइंग कि वो कहां से आ रही है.
1: दैट्स बिकॉज़ वी आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ पेन. तो एज अ पेरेंट, एज अ हस्बैंड वाइफ, जो भी हम हैं यहाँ पर, हमें मालूम है, हम अपने आप को तो ये कह देते कि हमें खुश रहने का कोई हक नहीं है, हम रहना नहीं चाहते खुश. यू नो, पीपल से आई डोंट वांट टू बी हैप्पी. इट्स नॉट अबाउट बीइंग हैप्पी. यस, यू डोंट वांट टू बी हैप्पी, बट हैप्पी इज नॉट एक्साइटमेंट. इट्स अबाउट बीइंग स्टेबल. इट्स अबाउट बीइंग पेन फ्री, दैट्स ऑल. क्योंकि अब आप जितनी बार दर्द क्रिएट करेंगे, अपने को तो देंगे ही, उनको भी भेजेंगे. देखो, अगर बच्चा कहीं और है, देखो नॉर्मल में कैसे होता, अगर बच्चा कहीं और है और वो हमें फोन करता दूसरे शहर से, कहता सब कुछ ठीक है घर पे, तो हम क्या कहते? हाँ हाँ,
0: सब ठीक है,
1: सब ठीक है. यहाँ पर हो सकता 10 प्रॉब्लम हो आज, हम बच्चे को कभी नहीं बताते, या जो भी हस्बैंड वाइफ पे गए हो, हम बताते नहीं. व्हाट इज द इंटेंशन? दूसरा जहाँ है वहाँ वो सेट हो जाए. अगर हम यहाँ की बात उसको बताते रहेंगे सारा, वो वहाँ सेट कैसे होगा? सिमिलरली आत्मा दूसरी जगह है, हमारा प्योर इंटेंशन क्या होना चाहिए? वो वहाँ पर सेट हो जाए. हम रोज पता है क्या मैसेज भेजते हैं?
0: हम सेट नहीं होने दे, बिकॉज हमारा, इट मींस वी आर एक्चुअली बीइंग लिटिल सेल्फिश. I don't want to say that, but
1: because we're thinking only about ourselves, yes, no? Yeah. We're not thinking about them. Why we were not able to think about them? Because we thought they are gone.
0: Haan.
1: You know, जहाँ हमने कहा they are gone, तो फिर हमें यही नहीं था कि वो अभी हैं. हमने कहा वो तो चले गए.
0: वो मेरी ज़िंदगी से तो पर चले गए ना. ये बड़ा दुख है.
1: लेकिन
0: वो कहीं तो है
1: ना. सिमिलरली अगर बच्चा दूसरे शहर में, वो यहाँ नहीं
0: है, how should I accept it, you know? Like, ये मैं मान ही नहीं पाती हूँ, because ये इतने confusions और death के बाद क्या होता है क्या नहीं होता, इसको लेके इतने सारे belief systems हैं, ये इतना सब कुछ है, तो ये मैं कैसे accept कर लूँ कि वो है.
1: जब हमें ये समझ में आ गया कि हम आत्मा है, और ये हमें समझ में आ गया कि आत्मा का विनाश नहीं होता, तो फिर तो वो है ना. विनाश नहीं हो सकता ना. एनर्जी कैन नॉट बी फिनिश्ड, सो इट इज देयर. व्हाट डज एनर्जी डू? इट जस्ट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. सो वन कॉस्ट्यूम टू अनदर, वो है.
0: लेकिन यहाँ एक बात मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ कि इससे जुड़ी इतनी कन्फ्यूजन्स हैं कि हम फिर ना कई कई और चीजों में चले जाते हैं. उसने शरीर लिया कि नहीं लिया, वो यही है कि नहीं है, और कई बार हम कुछ और
1: उनसे कनेक्ट करने की भी कोशिश
0: करते हैं. इज इट राइट?
1: इट इज अगेन, सी, राइट एंड रॉन्ग अगेन. जितना हम उसको यहाँ खींचने, देखो एक तो है हम असंभव करने की कोशिश, या तो हमारे कुछ भी करने से अगर वो वापस इस कॉस्ट्यूम में आ सकते, गो एंड डू वट एवर यू वॉन्ट, वो तो होने नहीं वाला है. लेकिन अगर हम बार बार यहाँ कनेक्ट करना, मेरे से, यू नो, बहुत सारे आजकल टेक्निक्स फॉलो कर, क्या क्या, कम्युनिकेट विद हिम, आई कैन कनेक्ट विद हिम, जब वो यहाँ आ नहीं सकते, हमें उनको क्या करने देना है? जितने बच्चे हैं जिनको अपना पास्ट बर्थ याद आ जाता है, यू नो हाउ अनकंफर्टेबल दे बिकम. वो यहाँ है 5 साल के, याद उनको आ गया कुछ पास्ट का, ये उनका प्रेजेंट है. प्रेजेंट को वो छोड़ नहीं सकते, लेकिन वो प्रेजेंट और पास्ट के बीच में खींचते जाते. एंड दैट इज वाई इट्स लॉ ऑफ नेचर कि हमें वो पास्ट बर्थ भूल जाना चाहिए, क्योंकि जिसको नहीं भूलता वो बहुत कॉन्फ्लिक्ट में चलता है. तो इसी तरह वो आत्मा दूसरी जगह चली गई, लेट इट सेटल. अगर हम उसको इस तरह से अलग अलग तरह से खींचने की कोशिश करें,
0: सेटलमेंट नहीं होगा,
1: नहीं होगा ना. इट इज लाइक सपोज बच्चा दूसरे शहर में है और हम उसको फोन करके बोले वापिस आ जाओ, तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लग रहा. हम ऐसा बोलेंगे कभी? हम कहेंगे नहीं, सब ठीक है, आप वहीं रहो. सिमिलरली आत्मा कहीं और चले गए हैं, दूसरी जगह, हम थॉट्स क्या क्रिएट करते? क्यों छोड़ के चले गए? तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती, मुझे जीना ही नहीं है.
0: कुछ भी करके लौट आओ, यू नो, लाइक इट्स
1: नाउ, सी नाउ, इमेजिन दैट सोल देयर गेटिंग ऑल दीज थॉट्स, दीज ऑल वाइब्रेशंस, हाउ मच पेन. वो आ भी नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकते, वो सिर्फ क्या करते? रिसीव करते जाते, रिसीव करते जाते इतना दर्द. तो अपने लिए नहीं, उनके लिए, उस आत्मा के लिए जो गए हैं, लेट्स स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ आर सेल्फ. एंड ऑल्सो जो हमारे साथ अभी हैं परिवार में, ये भी एक बहुत बड़ी जो बात हो जाती, एक घर में 2-3-4 लोग हैं, एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, अच्छा हस्बैंड वाइफ हैं, एक नहीं है, we cannot do anything. लेकिन जो है
0: इरिटेशन होने लग जाती है. I just because मुझे अपने आप से हो रही होती है.
1: मेरे अंदर सिर्फ दर्द है ना, रिश्ते में क्या दूंगी मैं दूसरे को. हम ये नहीं वैल्यू करते कि ठीक है वो आज मेरा मेंबर मेरे साथ नहीं है लेकिन ये एक दो लोग. दिस इज हाउ द पास्ट
0: एक्चुअली एज इम्पोर्टेंट एज दैट चाइल्ड
1: एज इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स इक्वली इम्पोर्टेंट. वॉज इट दैट दैट पर्सन वॉज इम्पोर्टेंट द रेस्ट वर नॉट इम्पोर्टेंट. बट माई फोकस गोज ऑल टूवर्ड्स दैट वन हु इज नॉट देयर. And in the process, I neglect everyone who is there. बहुत घरों में ये देखा जा रहा है कि husband wife के बीच का relationship वो दूर हो जाते हैं एक दूसरे से. जो बच्चा है आज वो neglected feel कर रहा है क्योंकि parents क्या हैं पूरी तरह से दर्द में चले गए हैं. तो उस बच्चे को जो उनके साथ है उसके पास कौन सी एनर्जी है देने की. घर का पूरा वायुमंडल कैसा हो गया है दर्द में. We have to stop and ask ourselves. Till when will we let this past influence my present? I cannot do anything about it except for accepting the situation.
0: What to do then? Okay, one realization hits. I just hope a lot of people watching, because this is something actually one can empathize with, you know. Samajh mein aata hai, dard bhi genuine tha. Aur ab ye realization, jab facts saamne aate hain, ki ye hai. अब आप अगर अपने आप पर काम करने के लिए तैयार हैं तो क्या करें.
1: हमें ये पता है कि याद तो आती है, यू नो, हम कहें भूल जाएं उसको तो वो नहीं होता. लेकिन एक है प्यार से याद, दूसरा है दर्द से याद. नॉर्मली क्या होता है जैसे ही याद आती तो याद इज फॉलोड बाय दर्द. कई बार लोग ये भी कहते हैं कि बहुत सारी अच्छी मेमोरीज थी, हमने बहुत अच्छा समय उनके साथ बिताया, तो वो समय को याद करके हमें अच्छा लगता है. लेकिन एक्चुअली क्या होता, जैसे ही वो अच्छे वाले सीन्स हमें याद आते हमें उन क्षण बहुत अच्छा लगता. एंड नेक्स्ट क्षण हम दर्द में चले जाते कि अब वो सीन्स नहीं है,
0: क्योंकि अब वो नहीं है, यू नो, वो पूरा वो रोना,
1: वो सब कुछ एक्चुअली वो अच्छा नहीं है. इट्स नॉट दैट यू क्रिएटेड हैप्पीनेस और यू क्रिएटेड लव, यू स्टिल क्रिएटेड पेन. तो ये हमें याद रखना होगा कि ये दर्द जो हम बार बार जस्टिफाइड कहकर क्रिएट कर रहे हैं, ये मेरे ऊपर तो इम्पैक्ट डाल ही रहा है, मेरे साथ अब जो आत्माएं हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है, और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट
0: तो कोशिश क्या करें कि वो जो पुरानी गुड मेमोरीज हैं
1: उनको जब भी याद करें. नहीं, उनको जब भी याद करें, याद तो आती है, याद जब भी करें, वी कॉन्शियसली सिट एंड सेंड वाइब्रेशंस ऑफ लव कि यस आई अंडरस्टैंड यू आर समवेयर एल्स, आई विश दैट यू सेटल देयर. And I send you vibrations of love, vibrations. हम नहीं कहते एक मिनट उन आत्मा को शांति का दान भेजे, उस आत्मा की शांति के लिए नहीं हवन करते हैं, क्या करते हैं उस आत्मा की शांति के लिए. लेकिन उस आत्मा को शांति ये सिर्फ करने से नहीं मिलेगी. वो आत्मा को शांति कब मिलेगी,
0: जब
1: हम शांत रहेंगे. हम अगेन सी हाउ वी हैव बिकम, हम शांति भेजने के लिए भी करते हैं, वी आर डूइंग थिंग्स. कुछ भी करने से शांत, अगर मैं रो रो कर हवन कर रही हूँ, हवन नहीं पहुंचेगा उधर, वो तो फिजिकल है, क्या पहुंचेगा,
0: मेरा
1: दर्द पहुंचेगा. तो उस आत्मा की शांति के लिए हमें क्या करना होगा, हमें शांत रहना पड़ेगा. दैट्स द ओनली वे. एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू एक्सेप्ट एंड लेट गो ऑफ द पास्ट. एंड जब भी याद आए, वाइब्रेशंस ऑफ लव, पीस एंड पावर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
0: एंड एक्चुअली हम जितना पीस, पावर और इस लव की वाइब्रेशंस भेजेंगे वो हमसे ही होकर गुजरेंगे. तो दिस एक्चुअली वी कैन ट्राई इट आउट.
1: एक्चुअली सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है. दर्द क्यों क्रिएट करते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते. मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, मेरे साथ, मुझे नहीं. हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आत्मा का मेरे साथ इतना ही समय का पाठ था, अब उनका पाठ कहीं और है. और जितना हम उनको अच्छी वाइब्रेशंस भेजेंगे वो उस पाठ में बहुत अच्छा अपना जीवन अपने परिवार के साथ अपने नए शरीर में अपने नए रोल में बहुत अच्छा बिताएंगे. एंड एज अ फैमिली मेंबर, एज अ पेरेंट, हमारी शुभ भावना हमेशा क्या होगी कि वो बच्चा जहाँ भी है वो वहाँ पर बहुत
0: सेटल. आई थिंक इट्स अ वंडरफुल वे टू लुक एट इट. कोई बात, कोई सवाल मन में है, आप जरूर हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. Awakening with Brahma Kumaris में आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे को हमने अपने साथ लिया है. सिस्टर शिवानी, ये जो प्रोसेस है ये बिना साइलेंस में बैठे हम नहीं अनुभव भी कर पाएंगे, तो हम चाहेंगे कि अगर आज कुछ शेयर करें.
1: सबसे पहले अपने आप को देखें, इस शरीर का मालिक, इस शरीर को भी चलाने वाली शक्ति, दैट प्योर कॉन्शियंट बीइंग शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट. चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ. आई एम अ पीसफुल बींग. माई पीस इज माई क्रिएशन. इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दोज हु आर विद मी एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दोज हु हैव लेफ्ट. आई कैन क्रिएट इट राइट हियर इन द प्रेजेंट मोमेंट. And as I create it, it flows out from me. Shanti ke vibrations mujh atma se nikal bahar charon taraf phail rahe hain aur ye un atmaon tak pahunch rahe hain jo aaj mere saath nahi hain, lekin sambandh to hai atma ka. आत्मा के साथ संबंध, और ये संबंध स्नेह, शांति और शक्ति का है. आई सेंड आउट वाइब्रेशंस ऑफ पीस एंड लव टू दैट सोल. ओम शांति.
0: ओम शांति. थैंक यू सो मच. बहुत कुछ हम अभी तक अपने दर्द के लिए करते आए हैं, आज ये प्रयास भी करके देखें और फिर देखें कि कैसा हम महसूस करते हैं. आपसे अभी विदा लेते हैं. अवेकनिंग में आगे भी बहुत सी बातें होती रहेंगी. ओम शांति.

0: अपनी यात्रा के दौरान 18 अप्रैल 1951 को पोचमपल्ली गांव के हरिजन विनोबा से मिलने आए। अगर हमें जमीन मिली तो हम मेहनत करेंगे और मेहनत का खाएंगे। उन्हें 80 एकड़ जमीन चाहिए थी। विनोबा बोले, मैं तुम्हें जमीन दिलवाऊंगा, परंतु शर्त यह है कि तुम सबको मिलजुल कर काम करना होगा। हर एक को अलग से जमीन नहीं मिलेगी। वे सब मान गए। बाबा ने कहा, तो वैसा लिख कर दो, मैं तुम्हारा निवेदन सरकार के सामने रखता हूं। किंतु वहां उसी सभा में एक सज्जन श्री रामचंद्र रेड्डी 100 एकड़ जमीन हरिजनों को देने को तैयार हो गए। हम 100 एकड़ जमीन आप लोगों को दूंगा, ऐसा वचन बाबा के सामने दिया। उस दिन उन्हें पहला भूदान मिला। रात को सोने गए पर सो नहीं सके। अंदर से आवाज आती रही,
1: आज ये क्या हुआ? जमीन के लिए खून बहाने वाले लोगों से सिर्फ प्रेम से मांगने पर 100 एकड़ भूदान मिला। मांगने पर लोग जमीन दे सकते हैं क्या? आज ही क्या चमत्कार हुआ? इसको ईश्वर का इशारा समझो। अगर तुम्हें अहिंसा में विश्वास है तो ईश्वर के संकेत को उठा लो और जमीन की भूख को मिटाओ। जो ईश्वर तुम्हें मांगने की प्रेरणा देता है वही भूमिवान को देने की प्रेरणा देगा। तुम्हारे सामने ये चैलेंज है, बस उस काम को यदि नहीं उठा लेते तो अहिंसा का दावा छोड़ दो।
0: रात भर आवाज प्रति आवाज सुनाई देती रही और फिर अगले दिन उन्होंने पिछले दिन का अनुसरण किया। फिर तो वे मांगते गए और लोग देते गए। भिक्षु की झोली मानव हृदय में बहती करुणा ने भर दी। बिहार का दरभंगा जिला 1953-54 की भूदान यात्रा। बारिश के दिन थे, रास्ते में खेतों से गुजरना पड़ता था। एक बार बीच में ऐसा एक खेत आया जिसमें 8-10 फीट गहरा पानी था। छोटी सी नाव लाई गई, उसमें विनोबा और उनके साथियों को बैठाया। पानी गहरा था, ऊपर से तूफान और बारिश, नाव डोल रही थी। एक दो मनुष्य पानी बाहर फेंकने का काम कर रहे थे। विनोबा जी तो श्लोक पठन में तन्मय थे। जब किनारे पर पहुंचे तब रामदेव बाबू बोले, मुझे बड़ा डर था, मैं तो तैरना जानता था, परंतु आप थे मेरे साथ, दुनिया की इतनी बड़ी अमानत, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था।
1: अरे अरे, मैं तो जरा भी नहीं डरता। हम चिंता करें ना करें, आखिर होगा वही जो होने वाला है। गांधी जी के भतीजे छगनलाल गांधी ने एक आंखों देखी घटना मुझे सुनाई थी। एक बार समुद्र यात्रा में वे स्टीमर में डेक पर बैठे थे। उनके सामने ही एक स्त्री अपनी गोद में बच्चों को लिए बैठी थी। इतने में पानी की एक लहर आई और उस स्त्री की गोद में से बच्चे को उठाकर बहा ले चली। माँ तो किंग कर्तव्य मूढ़ हो गई। छगन भाई और उनकी पत्नी भी अवाक रह गए। कोई क्या कर सकता था? इतने में ही दूसरी लहर आई और बच्चे को माँ की गोद में छोड़ गई। उन क्षणों में माँ ने क्या किया? उसको ईश्वर में श्रद्धा थी, सो भगवत स्मरण किया, अन्यथा वह बेहोश हो जाती अथवा पानी में कूद पड़ती। तब भी क्या हो सकता था? दुख में मनुष्य को श्रद्धा ही बचाती है।
0: जुलाई 1953 की बात है। दक्षिण बिहार के हजारीबाग जिले में महायात्री की पदयात्रा चल रही थी। उस दिन हजारीबाग शहर में मुकाम था। शहर में दाखिल होते ही कुछ अग्रगण्य नागरिकों ने आकर विनोबा को खबर दी,
2: बिहार सरकार के गोवध बंदी के कानून में गाय के साथ बैल भी शामिल हो, इस वास्ते यहाँ के कार्यकर्ता वीर जी आमरण पर उतरे हैं। आज उपवास का 60वां दिन है, उनकी स्थिति अत्यंत चिंताजनक है, आप उन्हें समझा कर उपवास छुड़वाइए।
0: विनोबा जी तुरंत सम्मत हुए। वीर जी के घर जाते समय महादेवी ताई से कहा,
1: थोड़े संतरे, चाकू और एक गिलास भी साथ में ले चलना।
3: अच्छा हुआ आपके दर्शन हुए। मैं अब सुख से मर सकूंगा।
1: मरने की कोई जरूरत नहीं है, आपका आमरणांत उपवास सत्याग्रह नहीं है, दुराग्रह है, ऐसा मेरा स्पष्ट अभिप्राय है। यह मैं आपको समझाने के लिए ही यहां आया हूं। देश अब स्वतंत्र हुआ है, लोकतंत्र की पद्धति से देश का कारोबार चलता है। जनता के पास जाकर अपने मत का प्रचार करके जनमत को अपने अनुकूल बनाने का स्वातंत्र है, उसका उपयोग करने के बजाय आपने यह उपवास क्यों शुरू किया है? लोगों को अपना विचार समझाइए, फिर खुद जनता सरकार से उस तरह का कानून बनवा लेगी। उपवास तो सत्याग्रह के तंत्र का आखिरी उपाय है। सब शस्त्र आजमा लेने पर ही आखिर में उसे अपनाना होता है। सत्याग्रह यानी भय धमकी नहीं है, सत्याग्रह यानी प्रेम प्रकर्ष। इसलिए आज की परिस्थिति में आपका उपवास सब दृष्टि से अनुचित है, इसे छोड़ दीजिए।
0: कितने ही क्षण मौत में बीत गए, फिर वीर जी ने अपनी बाजू रखी। विनोबा ने फिर से गहराई में जाकर सत्याग्रह का विचार वीर जी को समझाने का प्रयास किया। अंत में वीर जी ने कहा,
3: यदि आपकी आज्ञा होगी तो मैं उपवास छोड़ दूंगा।
1: ऐसा है तो उपवास बिल्कुल मत छोड़िए। मैं किसी को आज्ञा नहीं देता हूँ, न किसी की आज्ञा मानता हूँ। मैं आपको एक विचार ही समझा रहा हूँ। वह विचार यदि आपको जच जाए तभी आप छोड़िए, यदि ना जचे तो उपवास ना छोड़ते हुए प्रेम पूर्वक मृत्यु के अधीन हो जाइए। आपका यह उपवास सरकार के सामने तानी हुई पिस्तौल है, यह शुद्ध सत्याग्रह नहीं है, ऐसा मेरा स्पष्ट अभिप्राय है।
3: आप आज्ञा दीजिए, मैं आपके जैसे महान संत के शब्द के खातिर उपवास छोड़ दूंगा। बाकी आपके विचार मुझे पसंद नहीं आए हैं, परंतु आप आज्ञा दे सकते हैं।
0: मृत्यु के साथ जूझते हुए अस्थि पंजर को देखकर वहां आए हुए प्रतिष्ठित सज्जन विनोबा से प्रार्थना करने लगे, दीजिए आज्ञा दीजिए और इनके प्राण बचाइए।
1: मैं आपकी इस देह को बचाने नहीं आया हूं, आप ही क्या, किसी की भी देह की मुझे तिलमात्र परवाह नहीं है। यह देह आज नहीं कल गिरने वाली ही है। आपको जो विचार ठीक लगे उसके खातिर मरना आपका कर्तव्य है। मैं तो आपको यही समझाता हूँ कि आपका यह उपवास सत्याग्रह नहीं है। यह विचार जचे तभी उपवास छोड़िए।
0: फिर एक बार स्तब्धता। मृत्यु की शैया पर सोए हुए मनुष्य से ये लापरवाह फकीर कहता था, मुझे आपकी देह की परवाह नहीं है, बुद्धि को विचार जचे तभी उपवास छोड़िए, मैं आज्ञा देने वाला नहीं हूं। वातावरण गंभीर होता गया।
1: मैं आज दिन भर आपके गांव में हूं, कल सुबह यहां से निकलूंगा। दिन भर आप विचार कीजिए, विचार करने पर यदि आपको मेरा कहना सही लगे तो मुझे खबर दीजिए, मैं खुशी से आऊंगा और अपने हाथ से संतरे का रस पिलाकर उपवास छुड़वाऊंगा। परंतु मेरा विचार यदि ना जचे तो मेरा आपको आखिरी प्रणाम, परमेश्वर को सतत याद करते रहिएगा।
0: इतना कहकर विनोबा उठे और अपने मुकाम पर जाने के लिए निकल पड़े। दिन भर मुलाकाती लोग और सभा चर्चा आदि भरपूर कार्यक्रम रहा। रोज की तरह ही विनोबा ने सब कार्यक्रम पूरे किए। शाम को वीर जी के घर से संदेश आया, विनोबा फिर से वीर जी के यहाँ पहुंचे।
3: दिन भर मैं आपकी बात पर सोचता रहा, मुझे आपकी बात ठीक लगती है।
1: पूरा विचार करके ही निर्णय कीजिए, शरीर बचाने के लिए नहीं। आपके ये उपवास ठीक नहीं है ऐसा समझ में आए तभी उपवास छोड़ने का निर्णय कीजिए।
0: वीर जी को विचार ठीक ठाक समझा है, इसका पूरा भरोसा होने पर ही विनोबा ने अपने हाथ से संतरे के रस का गिलास वीर जी के हाथ में दिया। तमिलनाडु का वेदनायकन पालयम नाम का छोटा सा गांव। गांव का छुआछूत का प्रश्न विनोबा को अपने यात्रा पथ से मोड़कर भी इस गांव में लाने में समर्थ हुआ था। गांव में हरिजनों के लिए पक्के मकान बनाए गए थे, परंतु गांव के दूसरे लोगों को ये अधर्म लगता था कि हरिजन लोग ऐसे पक्के मकानों में आकर रहे। घर खाली पड़े थे। गांव की पुरानी परंपराओं की जंजीरों को तोड़ने की हिम्मत गांव के युवक वर्ग में भी नहीं थी। सूर्योदय की मंगल बेला में बाबा उस गांव में जा पहुंचे।

0: अभी सूर्य नारायण का उदय होगा, उनकी किरणें घर घर पहुंच जाएंगी, मुसलमान के घर में भी वे पहुंचेंगी, ब्राह्मण के घर में भी, अमीर के घर में भी और गरीब के घर में भी। इनके मन में कोई भेद नहीं है, जहां सभी का प्रवेश है वहीं प्रभु का वास है। सबको अपनाइए, सबको अपनाइए। हरियन भाइयों को भी नहा धोकर स्वच्छ रहना चाहिए, किसी से डरना नहीं चाहिए।
1: हम स्वच्छ कपड़े पहनते हैं तो ये लोग डराते हैं, धमकाते हैं और मारते भी हैं।
0: क्यों भाई, आप लोग उन्हें डराते हैं?
2: ये लोग स्वच्छ रहेंगे तो हमें कुछ नहीं करना है।
1: आपके सामने तो ये लोग ऐसा नहीं करेंगे।
0: आप सब लोग सामने आइए और एक दूसरे से हाथ मिलाइए, सके तो आइए।
3: अब दो मिनट के लिए मौन और संत के स्पर्श के बिना रूढ़ी श्रृंखला टूटना नहीं चाहती थी। विनोबा उठे और एक हरिजन भाई का हाथ पकड़कर गांव के सवर्ण भाई के हाथ से मिलाया। रूढ़ी जंजीर पर प्रहार हो चुका था, वो श्रृंखला कमजोर हो गई थी। लोगों ने कहा, ये लोग साफ सुथरे रहेंगे, मांस नहीं खाएंगे तो हमें कोई उर्ज नहीं है।
0: आपके घर में बिल्ली आती है ना, वह क्या खाती है? चूहा खाती है, तो भी आप उसे अपने घर में आने देते हैं? ये बात ठीक है कि सफाई रहनी चाहिए, परंतु ऊपर ऊपर की सफाई का इतना महत्व तो नहीं है जितना महत्व तो अंदर की सफाई का है। ऊपर से साफ सुथरे कपड़े पहनने वाले लोग भी झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं। हरिजन भाइयों, अब तुम लोग डरो मत, साफ रहना। अब तुम नए घरों में रहने के लिए आ जाओ।
3: भेद मिट गया, हरिजनों का वहां आकर रहना तय हुआ। इतने में बाबा के भोजन का समय हो गया। जय भाई ने दही की कटोरी उनके हाथ में रखी। दही का चम्मच मुंह में रखते हुए बाबा बोले,
0: देखिए भाइयों, मैंने अभी इस हरिजन को स्पर्श किया है और मैं खाने को बैठा हूं। अब मैं नरक में जाऊंगा और आप लोग स्वर्ग में जाएंगे। जहां कुछ लोग डोली में बैठते हैं और कुछ लोग उसे उठाते हैं, ऐसी असमानता वाली जगह स्वर्ग हो तो भी विनोबा को वह पसंद नहीं है।
3: उस गांव के एक भाई अपनी सारी 30 एकड़ जमीन दान करने आए थे, परंतु बाबा ने उनमें से थोड़ी सी रखी और बाकी की जमीन उन्हीं को लौटा दी। बड़े भाई का पुण्य कार्य छोटे भाई उस भाई की लड़की में भी जागा और दान पत्रों के साथ उस परिवार ने विनोबा के चरणों में तिरुक्कुरल, भागवत, रामायण और दिव्य प्रबंध के धर्म ग्रंथ भी रख दिए।

0: वहाँ से चलना है. इट इज़ बेस्ड ऑन माई कार्मिक कनेक्शंस. हम जिस परिवार में हमारा जन्म होता, जिन लोगों के हम कनेक्शन में आते, इट इज़ बिकॉज उन आत्माओं के साथ मुझ आत्मा का कार्मिक कनेक्शन है, जिसको हम कहें एनर्जी के लेन देन है. दिस इज़ बेस्ड ऑन माई पास्ट कार्मिक कनेक्शंस. तो जिन आत्माओं के साथ हम आज हैं, हम पहले भी उनके साथ कभी थे. जब हम उनके साथ पहले थे, हमारा एक पर्टिकुलर अकाउंट क्रिएट हुआ था. अब हम फिर उनको मिलते, फिर हमारा एक अकाउंट है. लेकिन जैसे ही अब मेरा ये अकाउंट जो था वो सेटल हो जाता, आई हैव टू लीव. आई कैन नॉट स्टे वन मिनट मोर आफ्टर दैट. तो जब हमें ये समझ में आता, वो आत्मा मेरे कॉन्टैक्ट में आई फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, for settling a particular account, उसके बाद the soul cannot be in my contact anymore, क्योंकि उसका वो account finish हो गया and it has to go somewhere else, जहाँ उनका एक
1: नया account
0: है. वो soul अपनी journey पे है. You know, it's like एक train में हम जा रहे हैं. हम सब अपनी अपनी journey पर हैं. ऐसा नहीं होगा कि सब लोग एक ही station से चढ़ें और सब लोग एक ही station पे उतरे. हर एक की journey अलग अलग है. तो हर एक का बोर्डिंग पॉइंट वो भी अलग अलग है. हर एक का उतरने का स्थान वो भी अलग अलग है, क्योंकि हर एक अपनी अपनी यात्रा पर है.
1: But I didn't want to finish this account. See?
0: No, it's not about I wanting to finish this account. I'm not talking about my account. It's about the other soul's account. अगर आपका अकाउंट मेरे साथ चार दिन का है, तो उसके बाद आपने पांचवें दिन दूसरी जगह जाना ही जाना है, क्योंकि पांचवें दिन आपका कनेक्शन दूसरी जगह. लेट्स से आप हफ्ते में तीन दिन हमारे साथ शूट करते हैं, लेकिन चौथे दिन आपको कहीं और शूट पे जाना है. आपकी वो कमिटमेंट है. अब मैं को तीन दिन आपके साथ बहुत अच्छा लगा, मैं सोचूं चौथे दिन भी आप यहीं आ जाएं, तो मेरे चाहने से आप यहाँ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आपका कमिटमेंट अब चौथे दिन कहीं और है. अब मैं जो यहाँ पीछे बैठी, आप तो चले गए कहीं और. अब मेरे पास चॉइस है कि मैं इसको एक्सेप्ट करूं कि आपका कमिटमेंट आपका अकाउंट कोई और है, या मैं दर्द में रहूं कि वो क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है आज मेरे
1: साथ. सबसे बड़ी बात ये भी, फिर ये भी रहता है कि तो इसका मतलब उनको जब वो चले गए हम याद ही नहीं रहते, यू नो, बिकॉज कमिटमेंट पूरा हुआ.
0: हम उनको याद नहीं रहते, ये उनके लिए अच्छा है ना एक्चुअली. अगर हम एक पल के लिए देखें, आई मेट वन मदर जिनका 21 साल का बेटा ने एक्सीडेंट में डेथ हुई. तो वो बहुत अच्छा पास्ट का अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे. बेटा दूसरे देश में था, तो कहा हमारा इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था कि यहाँ अगर मैं अपसेट होती, उसको वहाँ पता चलता, या उसके साथ कुछ होता, तो मुझे यहाँ इतना जैसे हमारा यू नो वो बॉन्डिंग था. तो कहते हम तुरंत फोन करते एक दूसरे को, सब ठीक है, कुछ हुआ है? एंड शी सेड इनवेरिएबली वी वर राइट कि दूसरे के साथ कुछ ना कुछ हुआ था. तो इतना हमारा कनेक्शन. अब वो बच्चा, वो आत्मा कहीं और चली गई है. ये मदर बहुत रोती है, रोज रोती है इतना. तो आई जस्ट आस्क्ड हर वन थिंग. आई सेड कल तक आपका और उस आत्मा का इतना कनेक्शन था ना कि आपकी एक थॉट उधर तक पहुंचती, उसकी एक थॉट आप तक पहुंचती. अब वो आत्मा का कॉस्ट्यूम चेंज हो गया है. सी व्हाट वी से, इट्स ओवर, इट्स डेथ, इट्स फिनिश्ड. नो, इट्स जस्ट द सोल हैज चेंज्ड अनदर कॉस्ट्यूम. लेकिन क्या वो कनेक्शन फिनिश हो गया होगा? क्या वो एनर्जी एक्सचेंज फिनिश हो गया होगा? अगर आप आज कहीं और भी चले गए, क्या आपको भूल गए, आपको याद नहीं आएगी? आएगी. अब क्या होगा? लेकिन पहले वो दूसरे देश में था, उसको अगर याद आता या उसको कैच होता, ही कुड कॉल. एक मिनट के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्रिएट द सीन इन फ्रंट ऑफ यू कि वो आत्मा अब एक दूसरे शरीर में है, प्रोबेबली इन द वूम्ब ऑफ द मदर और अ वेरी लिटिल बेबी, जस्ट कैन नॉट कॉल यू बैक.
1: But will he remember? It's not the remembrance.
0: It is not remembrance. शुरू शुरू में तो remembrance है.
1: हाँ.
0: एक आत्मा जब उस शरीर में है, आप देखो एक बच्चे को शुरू में सारा पास्ट याद होता है.
1: इट्स लाइक
0: कभी वो हंसता है, कभी वो रोता है. क्या? क्योंकि नेचर है ना, जैसे हमें पास्ट भूलता जाता है. तो नेचर बहुत सुंदर ऐसे बनी हुई है प्रकृति कि जैसे जैसे बच्चा बोलने की स्टेज पर आता, दो तीन चार साल, तीन साल तो हो जाते, तब तक उसको पास्ट भूल जाता, क्योंकि प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन लेयर उसके ऊपर सारी कोड होते जाते. तो कई बच्चे ऐसे मिलते हैं ना जिनको पास्ट याद होता, तो वो किस एज में होते हैं, वो 19, 20, 25 की एज

0: में नहीं होता कभी भी,
1: चार
0: इट्स फाइव सिक्स सेवन. क्यों? क्योंकि मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग थी कि वो जो बात 2-3 साल तक भूल जानी चाहिए थी वो 4-5-6 साल तक भी याद है और वो उसका वर्णन फिर करना शुरू करते. लेकिन जब वो आत्मा माँ के गर्भ में है वो तो अभी अभी आई है, या वो एक एकदम छोटा बच्चा है वो तो अभी, उसको सब याद है, सारा कुछ याद है और वो पास्ट को याद करके ही रोता और हंसता है. बच्चा कभी भी प्रेजेंट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है. हम हॉस्पिटल में बच्चे को क्रेडल में देखते, हम उसके साथ प्यार से बात करें, हमें लगता है वो हमें देख कर डजेंट इवन नो मी, डजेंट इवन रिकग्नाइज मी, वो कुछ और याद करके हंसता और रोता है. अब यहाँ वो माँ है, यहाँ वो आत्मा है, हम उसको बच्चा नहीं कहेंगे, अब वो आत्मा है. यहाँ अगर पहले आपका एक एक दर्द वो ऐसे कैच करता था, अब नहीं करेगा. अब करेगा या नहीं करेगा? अभी भी करेगा. यहाँ आप इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, किसको याद करके रो रहे हैं? उसको याद करके रो रहे हैं. लॉ ऑफ एनर्जी
1: किस बॉडी में था, यू नो, किसी और कॉस्ट्यूम में था.
0: पर कॉस्ट्यूम को नहीं हम याद करते ना, एनर्जी का जो एक्सचेंज है वो कॉस्ट्यूम और कॉस्ट्यूम के बीच नहीं, वो आत्मा और आत्मा के बीच है. दैट्स व्हाट वी सेड इज रिलेशनशिप. अब जब हम रो रहे हैं हम पेन की एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, एनर्जी ट्रैवल करने वाले हैं, कहाँ ट्रैवल करेगी?
1: उसी पे जाएगी,
0: उस आत्मा के प्रति जिसके लिए वो क्रिएट की गई है. सो यस, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. यस, हम नहीं इस, हम कहते हैं हम इस दर्द से नहीं निकल सकते, लेकिन अगर हम अपने आप को प्यार से और लॉजिकली समझाएंगे कि जब वो आत्मा यहाँ थी तो मैं चाहे कुछ भी हो जाता उसको दर्द ना होने देती, मैं कुछ भी कर जाती उसको अपने दर्द से दूर करने के लिए, और आज मैं ही बैठकर क्या भेज रही हूँ, मैं दर्द भेजते जा रहे हो, भेजते सिर्फ इसलिए क्योंकि अब वो मेरे सामने नहीं है तो मुझे पता नहीं चल रहा, तो मेरे ऊपर उसका फर्क नहीं पड़ रहा. इफ आई हैव द रियलाइजेशन दैट ऑल दिस पेन दैट आई एम क्रिएटिंग इज गोइंग टू दैट सोल, आई विल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ. अपने लिए नहीं ध्यान रखना चाहते ना, ठीक है, वी से मुझे नहीं ध्यान रखना अपना, आई डोंट वॉन्ट टू बी फ्री ऑफ पेन. अपने लिए नहीं, उनके लिए सही,
1: जिसके लिए हम जीवन भर वैसे ही करते आए हैं,
0: जिनके लिए, जो हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट थे, उनको इतना दर्द पहुंच रहा है. अच्छा, बच्चा अगर थोड़ा बड़ा होता जाता वो हमें याद नहीं रख, वो याद नहीं करता, भूल जाता है, लेकिन एनर्जी जो हम भेज रहे हैं वो एनर्जी वो फिर भी रिसीव करता है. एनर्जी ऐसी चीज़ है, आप जिसकी प्रति क्रिएट करो इट इज़ ट्रैवलिंग टू दैट पर्सन.
1: तो मतलब इसका मतलब वो जो सोल जिसने जहाँ जन्म लिया जो भी है उस तक वो वाइब्रेशंस तो पहुंच रही हैं
0: ऑलवेज ऑलवेज ऑफ कोर्स. सी इट्स लाइक दिस, आप मेरे लिए जो भी एनर्जी क्रिएट करोगे
1: तो देन अननोइंगली
0: आई एम सेंडिंग सो मच पेन.
1: यस, और वो पेन में चला जाता होगा बच्चा, मतलब वो जहां पे भी होगा.
0: सी हाउ इट हैपेंस, क्योंकि हमारे अंदर आज इतनी ताकत नहीं है कि हम अपने आप की प्रोटेक्शन कर सके. हमने यही देखा ना, आपने दर्द भेजा तो मेरे भी दर्द में चली जाते हो. अनलेस आई वर्क वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ कि आपकी एनर्जी औरों की एनर्जी मुझ पर इन्फ्लुएंस नहीं करे, लेकिन मोस्ट ऑफ अस आर नॉट डूइंग दैट वर्क. तो मोस्ट ऑफ अस आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाटएवर एनर्जी इज बीइंग सेंट टू अस. तो जब हम उन सब लोगों की एनर्जी से इन्फ्लुएंस होते जो हमारे आसपास है, अगर कोई कहीं और भी है लेकिन वो जो एनर्जी भेज रहे हैं उसका भी इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर.
1: और उस बच्चे को तो ये पता भी नहीं चलेगा ना, बिकॉज वो सामने हो तब हमें समझ में आता है कि इसकी एनर्जी ये आ रही है, वो उसका ये आ रहा है, लेकिन वो तो द चाइल्ड वोंट बी इवन नोइंग कि वो कहां से आ रही है.
0: दैट्स बिकॉज वी आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ पेन. तो एज अ पेरेंट, एज अ हस्बैंड वाइफ, जो भी हम हैं यहाँ पर, हमें मालूम है, हम अपने आप को तो ये कह देते कि हमें खुश रहने का कोई हक नहीं है, हम रहना नहीं चाहते खुश. यू नो, पीपल से आई डोंट वांट टू बी हैप्पी. इट्स नॉट अबाउट बीइंग हैप्पी. यस, यू डोंट वांट टू बी हैप्पी, बट हैप्पी इज नॉट एक्साइटमेंट. इट्स अबाउट बीइंग स्टेबल. इट्स अबाउट बीइंग पेन फ्री, दैट्स ऑल. क्योंकि अब आप जितनी बार दर्द क्रिएट करेंगे अपने को तो देंगे ही, उनको भी भेजेंगे. देखो, अगर बच्चा कहीं और है, देखो नॉर्मल में कैसे होता, अगर बच्चा कहीं और है और वो हमें फोन करता दूसरे शहर से, कहता सब कुछ ठीक है घर पे, तो हम क्या कहते? हाँ हाँ,
1: सब ठीक है,
0: सब ठीक है. यहाँ पर हो सकता 10 प्रॉब्लम हो आज, हम बच्चे को कभी नहीं बताते, या जो भी हस्बैंड वाइफ पे गए हो हम बताते नहीं. व्हाट इज द इंटेंशन? दूसरा जहाँ है वहाँ वो सेट हो जाए. अगर हम यहाँ की बात उसको बताते रहेंगे सारा, वो वहाँ सेट कैसे होगा? सिमिलरली आत्मा दूसरी जगह है, हमारा प्योर इंटेंशन क्या होना चाहिए? वो वहाँ पर सेट हो जाए. हम रोज पता है क्या मैसेज भेजते
1: हैं? हम सेट नहीं होने दे, बिकॉज हमारा, इट मीन्स वी आर एक्चुअली बीइंग लिटिल सेल्फिश. I don't want to say that, but
0: because we're thinking only about ourselves, yes, no, yeah. We're not thinking about them. why we were not able to think about them, because we thought they are gone.
1: Haan.
0: You know, jahan humne kaha they are gone, to fir hume yehi nahi tha ki wo abhi hain. Humne kaha wo to chale gaye.
1: Wo meri zindagi se to par chale gaye na, ye bada dukh hai.
0: Lekin
1: wo kahin to hai.
0: Hai na. सिमिलरली अगर बच्चा दूसरे शहर में वो यहाँ नहीं है,
1: लेकिन एक्सेप्ट इट, यू नो, लाइक ये मैं मान ही नहीं पाती हूँ, बिकॉज ये इतने कंफ्यूजन्स और डेथ के बाद क्या होता है क्या नहीं होता, इसको लेके इतने सारे बिलीफ सिस्टम्स हैं या इतना सब कुछ है, तो ये मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ कि वो है.
0: जब हमें ये समझ में आ गया कि हम आत्मा है, और ये हमें समझ में आ गया कि आत्मा का विनाश नहीं होता, तो फिर तो वो है ना. विनाश नहीं हो सकता ना, एनर्जी कैन नॉट बी फिनिश्ड, सो इट इज देयर. व्हाट डज एनर्जी डू? इट जस्ट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, सो वन कॉस्ट्यूम टू अनदर, वो है.
1: लेकिन यहाँ एक बात मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ कि इससे जुड़ी इतनी कंफ्यूजन हैं कि हम फिर ना कई कई और चीजों में चले जाते हैं. उसने शरीर लिया कि नहीं लिया, वो यही है कि नहीं है, और कई बार हम कुछ और
0: कनेक्ट करने की भी कोशिश
1: करते हैं. इज इट राइट?
0: इट इज अगेन सी राइट एंड रॉन्ग. अगेन जितना हम उसको यहाँ खींचने, देखो एक तो है हम असंभव करने की कोशिश, या तो हमारे कुछ भी करने से अगर वो वापस इस कॉस्ट्यूम में आ सकते, गो एंड डू व्हाट एवर यू वांट, वो तो होने नहीं वाला है. लेकिन अगर हम बार बार यहाँ कनेक्ट करना मेरे से, यू नो, बहुत सारे आजकल टेक्निक्स फॉलो कर, क्या क्या, कम्युनिकेट विद हिम, आई कैन कनेक्ट विद हिम, जब वो यहाँ आ नहीं सकते, हमें उनको क्या करने देना है? जितने बच्चे हैं जिनको अपना पास्ट बर्थ याद आ जाता है, यू नो हाउ अनकंफर्टेबल दे बिकम. वो यहाँ है 5 साल के, याद उनको आ गया कुछ पास्ट का, ये उनका प्रेजेंट है. प्रेजेंट को वो छोड़ नहीं सकते, लेकिन वो प्रेजेंट और पास्ट के बीच में खींचते जाते. एंड दैट इज वाई इट्स लॉ ऑफ नेचर कि हमें वो पास्ट बर्थ भूल जाना चाहिए, क्योंकि जिसको नहीं भूलता वो बहुत कॉन्फ्लिक्ट में चलता है. तो इसी तरह वो आत्मा दूसरी जगह चली गई, लेट इट सेटल. अगर हम उसको इस तरह से अलग अलग तरह से खींचने की कोशिश
1: करें, नहीं होगा
0: ना. इट इज लाइक सपोज बच्चा दूसरे शहर में है और हम उसको फोन करके बोले वापिस आ जाओ, तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लग रहा, हम ऐसा बोलेंगे कभी? हम कहेंगे नहीं, सब ठीक है, आप वहीं रहो. सिमिलरली आत्मा कहीं और चली गई है, दूसरी जगह, हम थॉट्स क्या क्रिएट करते, क्यों छोड़ के चले गए, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती, मुझे जीना ही नहीं है,
1: कुछ भी करके लौट आओ, यू नो, लाइक इट्स
0: नाउ सी, नाउ इमेजिन दैट सोल देयर गेटिंग ऑल दिस थॉट्स, दीज ऑल वाइब्रेशंस, हाउ मच पेन. वो आ भी नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकते, वो सिर्फ क्या करते, रिसीव करते जाते, रिसीव करते जाते इतना दर्द. तो अपने लिए नहीं, उनके लिए, उस आत्मा के लिए जो गए है, लेट्स स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ आर सेल्फ. एंड ऑल्सो जो हमारे साथ अभी हैं परिवार में, ये भी एक बहुत बड़ी जो बात हो जाती, एक घर में 2-3-4 लोग हैं, एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, अच्छा हस्बैंड वाइफ है, एक नहीं है, रिश्ते में क्या दूंगी मैं दूसरे को. हम ये नहीं वैल्यू करते कि ठीक है वो आज मेरा मेंबर मेरे साथ नहीं है, लेकिन ये 1-2 लोग, दिस इज हाउ द पास्ट
1: एक्चुअली एज इम्पोर्टेंट इज दैट चाइल्ड,
0: एज इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स, इक्वली इम्पोर्टेंट. वॉज इट दैट दैट पर्सन वॉज इम्पोर्टेंट, द रेस्ट वर नॉट इम्पोर्टेंट, बट माई फोकस गोज ऑल टूवर्ड्स that one who's not there, and in the process I neglect everyone who is there. Bahut gharon mein ye dekha ja raha hai ki husband wife ke beech ka relationship wo dur ho jate hain ek dusre se. Jo bachcha hai aaj wo neglected feel kar raha hai, kyunki parents kya hain, puri tarah se dard mein chale gaye hain. To us bachche ko jo unke saath hai, uske paas kaun si energy hai dene ki? Ghar ka pura vayumandal kaisa ho gaya hai? Dard mein. We have to stop and ask ourselves, till when will we let this past influence my present? I cannot do anything about it except for accepting the situation.
1: What to do then? Okay, one realization hits. I just hope a lot of people watching, because this is something actually one can empathize with, you know. Samajh mein aata hai, dard bhi genuine tha. Aur ab ye realization, jab facts saamne aate hain, ki ये है, अब आप अगर अपने आप पर काम करने के लिए तैयार हैं तो क्या करें?
0: हमें ये पता है कि याद तो आती है, यू नो, हम कहें भूल जाएं उसको तो वो नहीं होता, लेकिन एक है प्यार

0: क्या होता है, जैसे याद आती तो याद इज फॉलोड बाय दर्द. कई बार लोग ये भी कहते हैं कि बहुत सारी अच्छी मेमोरीज थी, हमने बहुत अच्छा समय उनके साथ बिताया, तो वो समय को याद करके हमें अच्छा लगता है. लेकिन एक्चुअली क्या होता, जैसे ही वो अच्छे वाले सीन्स हमें याद आते, हमें उन क्षण बहुत अच्छा लगता, एंड नेक्स्ट क्षण हम दर्द में चले जाते कि अब वो सीन्स नहीं
1: क्योंकि
0: है.
1: अब वो नहीं है, यू नो, वो पूरा वो
0: तो
1: रोना वो सब
0: एक्चुअली वो
1: कुछ ही है.
0: अच्छा नहीं है. इट्स नॉट दैट यू क्रिएटेड हैप्पीनेस और यू क्रिएटेड लव, यू स्टिल क्रिएटेड पेन. तो ये हमें याद रखना होगा कि ये दर्द जो हम बार बार जस्टिफाइड कहकर क्रिएट कर रहे हैं, ये मेरे ऊपर तो इम्पैक्ट डाल ही रहा है, मेरे साथ अब जो आत्माएं हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है, और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट
1: तो
0: उस
1: कोशिश
0: आत्मा
1: क्या
0: पर
1: करें
0: डाल,
1: कि वो जो पुरानी
0: उस
1: गुड
0: आत्मा
1: मेमोरीज हैं
0: को जब
1: वो
0: भी
1: भी
0: याद
1: याद ना
0: करें.
1: करें.
0: नहीं,
1: हाँ
0: उनको जब भी याद करें, याद तो आती है, याद जब भी करें, वी कॉन्शियसली सिट एंड सेंड वाइब्रेशंस ऑफ लव कि यस आई अंडरस्टैंड यू आर समवेयर एल्स, आई विश दैट यू सेटल देयर एंड आई सेंड यू वाइब्रेशंस ऑफ लव, वाइब्रेशंस. हम नहीं कहते 1 मिनट उन आत्मा को शांति का दान भेजे, उस आत्मा की शांति के लिए नहीं हवन करते हैं, क्या करते हैं उस आत्मा की शांति के लिए. लेकिन उस आत्मा को शांति ये सिर्फ करने से नहीं मिलेगी, वो आत्मा को शांति कब मिलेगी,
1: जब हम
0: जब हम
1: शांत हों.
0: शांत रहेंगे. हम अगेन सी हाउ वी हैव बिकम, हम शांति भेजने के लिए भी करते हैं, वी आर डूइंग थिंग्स. कुछ भी करने से शांत, अगर मैं रो रो कर हवन कर रही हूँ, हवन नहीं पहुंचेगा उधर, वो तो फिजिकल है. क्या पहुंचेगा, वो
1: मेरा
0: मेरा
1: रोना.
0: दर्द पहुंचेगा. तो उस आत्मा की शांति के लिए हमें क्या करना होगा, हमें शांत रहना पड़ेगा. दैट्स द ओनली वे एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू एक्सेप्ट एंड लेट गो ऑफ द पास्ट. एंड जब भी याद आए, वाइब्रेशंस ऑफ लव, पीस एंड पावर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
1: एंड एक्चुअली हम जितना पीस पावर और इस लव की वाइब्रेशंस भेजेंगे वो हमसे ही होकर गुजरेंगे. तो दिस एक्चुअली वी कैन ट्राई इट आउट.
0: एक्चुअली सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है. दर्द क्यों क्रिएट करते हैं, हम एक्सेप्ट
1: आई
0: नहीं कर,
1: डोंट वॉन्ट टू
0: मेरे साथ
1: एक्सेप्ट.
0: क्यों ऐसा
1: हाँ
0: हुआ, मेरे साथ मुझे नहीं. हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आत्मा का मेरे साथ इतना ही समय का पाठ था, अब उनका पाठ कहीं और है, और जितना हम उनको अच्छी वाइब्रेशंस भेजेंगे, वो उस पाठ में बहुत अच्छा अपना जीवन अपने परिवार के साथ, अपने नए शरीर में, अपने नए रोल में बहुत अच्छा बिताएंगे. एंड एज अ फैमिली मेम्बर, एज अ पेरेंट, हमारी शुभ भावना हमेशा क्या होगी कि वो
1: जहाँ
0: बच्चा
1: है वो.
0: जहाँ भी
1: हाँ
0: है वो वहाँ पर बहुत सेटल्ड.
1: ब्यूटिफुल. आई थिंक इट्स अ वंडरफुल वे टू लुक एट इट. कोई बात कोई सवाल मन में है आप ज़रूर हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 01242667000, 9999344555, 9999344666, 9873666555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे को हमने अपने साथ लिया है. सिस्टर शिवानी, ये जो प्रोसेस है ये बिना साइलेंस में बैठे हम नहीं अनुभव भी कर पाएंगे. तो हम चाहेंगे कि अगर आज कुछ शेयर करें.
0: सबसे पहले अपने आप को देखें, इस शरीर का मालिक, इस शरीर को भी चलाने वाली शक्ति, दैट प्योर कॉन्शियंट बीइंग शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट. मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ. आई एम अ पीसफुल बीइंग. My peace is my creation. It is not dependent on those who are with me, and it is not dependent on those who have left. I can create it right here in the present moment. And as I create it, it flows out from me. Shanti ke vibrations. मुझ आत्मा से निकल बाहर चारों तरफ फैल रहे हैं और ये उन आत्माओं तक पहुंच रहे हैं जो आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन संबंध तो है आत्मा का, आत्मा के साथ संबंध. और ये संबंध स्नेह, शांति और शक्ति का है.

0: I send out vibrations. I send out vibrations of peace and love to that soul. Om Shanti.
1: Om Shanti. Thank you so much. बहुत कुछ हम अभी तक अपने दर्द के लिए करते आए हैं, आज ये प्रयास भी करके देखें और फिर देखें कि कैसा हम महसूस करते हैं। आपसे अभी विदा लेते हैं, अवेकनिंग में आगे भी बहुत सी बातें होती रहेंगी। ओम शांति।

0: अपनी यात्रा के दौरान 18 अप्रैल 1951 को पोचमपल्ली गांव के हरिजन विनोबा से मिलने आए। अगर हमें जमीन मिली तो हम मेहनत करेंगे और मेहनत का खाएंगे। उन्हें 80 एकड़ जमीन चाहिए थी। विनोबा बोले, मैं तुम्हें जमीन दिलवाऊंगा, परंतु शर्त यह है कि तुम सबको मिलजुल कर काम करना होगा। हर एक को अलग से जमीन नहीं मिलेगी। वे सब मान गए। बाबा ने कहा, तो वैसा लिख कर दो, मैं तुम्हारा निवेदन सरकार के सामने रखता हूं। किंतु वहां उसी सभा में एक सज्जन श्री रामचंद्र रेड्डी 100 एकड़ जमीन हरिजनों को देने को तैयार हो गए। हम 100 एकड़ जमीन आप लोगों को दूंगा, ऐसा वचन बाबा के सामने दिया। उस दिन उन्हें पहला भूदान मिला। रात को सोने गए पर सो नहीं सके। अंदर से आवाज आती रही,
1: आज ये क्या हुआ? जमीन के लिए खून बहाने वाले लोगों से सिर्फ प्रेम से मांगने पर 100 एकड़ भूदान मिला। मांगने पर लोग जमीन दे सकते हैं क्या? आज ये क्या चमत्कार हुआ? इसको ईश्वर का इशारा समझो। अगर तुम्हें अहिंसा में विश्वास है तो ईश्वर के संकेत को उठा लो और जमीन की भूख को मिटाओ। जो ईश्वर तुम्हें मांगने की प्रेरणा देता है, वही भूमिवान को देने की प्रेरणा देगा। तुम्हारे सामने ये चैलेंज है, बस इस काम को यदि नहीं उठा लेते तो अहिंसा का दावा छोड़ दो।
0: रात भर आवाज प्रति आवाज सुनाई देती रही और फिर अगले दिन उन्होंने पिछले दिन का अनुसरण किया। फिर तो वे मांगते गए और लोग देते गए। भिक्षु की झोली मानव हृदय में बहती करुणा ने भर दी। बिहार का दरभंगा जिला 1953-54 की भूदान यात्रा। बारिश के दिन थे, रास्ते में खेतों से गुजरना पड़ता था। एक बार बीच में ऐसा एक खेत आया जिसमें 8-10 फीट गहरा पानी था। छोटी सी नाव लाई गई, उसमें विनोबा और उनके साथियों को बैठाया। पानी गहरा था, ऊपर से तूफान और बारिश, नाव डोल रही थी। एक दो मनुष्य पानी बाहर फेंकने का काम कर रहे थे। विनोबा जी तो श्लोक पठन में तन्मय थे। जब किनारे पर पहुंचे तब रामदेव बाबू बोले, मुझे बड़ा डर था, मैं तो तैरना जानता था, परंतु आप थे मेरे साथ, दुनिया की इतनी बड़ी अमानत, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था।
1: अरे अरे, मैं तो जरा भी नहीं डरता। हम चिंता करें ना करें, आखिर होगा वही जो होने वाला है। गांधी जी के भतीजे छगनलाल गांधी ने एक आंखों देखी घटना मुझे सुनाई थी। एक बार समुद्र यात्रा में वे स्टीमर में डेक पर बैठे थे। उनके सामने ही एक स्त्री अपनी गोद में बच्चों को लिए बैठी थी। इतने में पानी की एक लहर आई और उस स्त्री की गोद में से बच्चे को उठाकर बहा ले चली। माँ तो किंग कर्तव्य मूढ़ हो गई। छगन भाई और उनकी पत्नी भी अवाक रह गए। कोई क्या कर सकता था? इतने में ही दूसरी लहर आई और बच्चे को माँ की गोद में छोड़ गई। उन क्षणों में माँ ने क्या किया? उसको ईश्वर में श्रद्धा थी, सो भगवत स्मरण किया, अन्यथा वह बेहोश हो जाती अथवा पानी में कूद पड़ती। तब भी क्या हो सकता था? दुख में मनुष्य को श्रद्धा ही बचाती है।
0: जुलाई 1953 की बात है। दक्षिण बिहार के हजारीबाग जिले में महायात्री की पदयात्रा चल रही थी। उस दिन हजारीबाग शहर में मुकाम था। शहर में दाखिल होते ही कुछ अग्रगण्य नागरिकों ने आकर विनोबा को खबर दी,
2: बिहार सरकार के गोवध बंदी के कानून में गाय के साथ बैल भी शामिल हो, इस वास्ते यहाँ के कार्यकर्ता वीर जी आमरण पर उतरे है। आज उपवास का 60वां दिन है। उनकी स्थिति अत्यंत चिंताजनक है, आप उन्हें समझा कर उपवास छुड़वाइए।
0: विनोबा जी तुरंत सम्मत हुए। वीर जी के घर जाते समय महादेवी ताई से कहा,
1: थोड़े संतरे, चाकू और एक गिलास भी साथ में ले चलना।
3: अच्छा हुआ आपके दर्शन हुए। मैं अब सुख से मर सकूंगा।
1: मरने की कोई जरूरत नहीं है, आपका आमरणांत उपवास सत्याग्रह नहीं है, दुराग्रह है, ऐसा मेरा स्पष्ट अभिप्राय है। यह मैं आपको समझाने के लिए ही यहां आया हूं। देश अब स्वतंत्र हुआ है, लोकतंत्र की पद्धति से देश का कारोबार चलता है। जनता के पास जाकर अपने मत का प्रचार करके जनमत को अपने अनुकूल बनाने का स्वातंत्र्य है। उसका उपयोग करने के बजाय आपने यह उपवास क्यों शुरू किया है? लोगों को अपना विचार समझाइए, फिर खुद जनता सरकार से उस तरह का कानून बनवा लेगी। उपवास तो सत्याग्रह के तंत्र का आखिरी उपाय है। सब शस्त्र आजमा लेने पर ही आखिर में उसे अपनाना होता है। सत्याग्रह यानी भय धमकी नहीं है, सत्याग्रह यानी प्रेम प्रकर्ष। इसलिए आज की परिस्थिति में आपका उपवास सब दृष्टि से अनुचित है, इसे छोड़ दीजिए।
0: कितने ही क्षण मौत में बीत गए, फिर वीर जी ने अपनी बाजू रखी। विनोबा ने फिर से गहराई में जाकर सत्याग्रह का विचार वीर जी को समझाने का प्रयास किया। अंत में वीर जी ने कहा,
3: यदि आपकी आज्ञा होगी तो मैं उपवास छोड़ दूंगा।
1: ऐसा है तो उपवास बिल्कुल मत छोड़िए। मैं किसी को आज्ञा नहीं देता हूँ, न किसी की आज्ञा मानता हूँ। मैं आपको एक विचार ही समझा रहा हूँ। वह विचार यदि आपको जच जाए तभी आप छोड़िए, यदि ना जचे तो उपवास ना छोड़ते हुए प्रेम पूर्वक मृत्यु के अधीन हो जाइए। आपका यह उपवास सरकार के सामने तानी हुई पिस्तौल है, यह शुद्ध सत्याग्रह नहीं है, ऐसा मेरा स्पष्ट अभिप्राय है।
3: आप आज्ञा दीजिए, मैं आपके जैसे महान संत के शब्द के खातिर उपवास छोड़ दूंगा। बाकी आपके विचार मुझे पसंद नहीं आए हैं, परंतु आप आज्ञा दे सकते हैं।
0: मृत्यु के साथ जूझते हुए अस्थि पंजर को देखकर वहां आए हुए प्रतिष्ठित सज्जन विनोबा से प्रार्थना करने लगे, दीजिए दीजिए, आज्ञा दीजिए और इनके प्राण बचाइए।
1: मैं आपकी इस देह को बचाने नहीं आया हूं, आप ही क्या, किसी की भी देह की मुझे तिल मात्र परवाह नहीं है। यह देह आज नहीं कल गिरने वाली ही है। आपको जो विचार ठीक लगे उसके खातिर मरना आपका कर्तव्य है। मैं तो आपको यही समझाता हूँ कि आपका यह उपवास सत्याग्रह नहीं है। यह विचार जचे तभी उपवास छोड़िए।
0: फिर एक बार स्तब्धता। मृत्यु की शैया पर सोए हुए मनुष्य से ये लापरवाह फकीर कहता था, मुझे आपकी देह की परवाह नहीं है, बुद्धि को विचार जचे तभी उपवास छोड़िए। मैं आज्ञा देने वाला नहीं हूं। वातावरण गंभीर होता गया।
1: मैं आज दिन भर आपके गांव में हूं, कल सुबह यहां से निकलूंगा। दिन भर आप विचार कीजिए, विचार करने पर यदि आपको मेरा कहना सही लगे तो मुझे खबर दीजिए, मैं खुशी से आऊंगा और अपने हाथ से संतरे का रस पिलाकर उपवास छुड़वाऊंगा। परंतु मेरा विचार यदि ना जचे तो मेरा आपको आखिरी प्रणाम, परमेश्वर को सतत याद करते रहिएगा।
0: इतना कहकर विनोबा उठे और अपने मुकाम पर जाने के लिए निकल पड़े। दिन भर मुलाकाती लोग और सभा चर्चा आदि भरपूर कार्यक्रम रहा। रोज की तरह ही विनोबा ने सब कार्यक्रम पूरे किए। शाम को वीर जी के घर से संदेश आया, विनोबा फिर से वीर जी के यहां पहुंचे।
3: दिन भर मैं आपकी बात पर सोचता रहा, मुझे आपकी बात ठीक लगती है।
1: पूरा विचार करके ही निर्णय कीजिए, शरीर बचाने के लिए नहीं। आपके ये उपवास ठीक नहीं है ऐसा समझ में आए तभी उपवास छोड़ने का निर्णय कीजिए।
0: वीर जी को विचार ठीक ठाक समझा है, इसका पूरा भरोसा होने पर ही विनोबा ने अपने हाथ से संतरे के रस का गिलास वीर जी के हाथ में दिया। तमिलनाडु का वेदनायकन पालयम नाम का छोटा सा गांव। गांव का छुआछूत का प्रश्न विनोबा को अपने यात्रा पथ से मोड़कर भी इस गांव में लाने में समर्थ हुआ था। गांव में हरिजनों के लिए पक्के मकान बनाए गए थे, परंतु गांव के दूसरे लोगों को ये अधर्म लगता था कि हरिजन लोग ऐसे पक्के मकानों में आकर रहे। घर खाली पड़े थे। गांव की पुरानी परंपराओं की जंजीरों को तोड़ने की हिम्मत गांव के युवक वर्ग में भी नहीं थी। सूर्योदय की मंगल बेला में बाबा उस गांव में जा पहुंचे।

0: अभी सूर्य नारायण का उदय होगा, उनकी किरणें घर घर पहुंच जाएंगी, मुसलमान के घर में भी वे पहुंचेंगी, ब्राह्मण के घर में भी, अमीर के घर में भी और गरीब के घर में भी। इनके मन में कोई भेद नहीं है, जहां सभी का प्रवेश है वहीं प्रभु का वास है। सबको अपनाइए, सबको अपनाइए। हरिजन भाइयों को भी नहा धोकर स्वच्छ रहना चाहिए, किसी से डरना नहीं चाहिए।
1: हम स्वच्छ कपड़े पहनते हैं तो ये लोग डराते हैं, धमकाते हैं और मारते भी हैं।
0: क्यों भाई, आप लोग उन्हें डराते हैं?
2: ये लोग स्वच्छ रहेंगे तो हमें कुछ नहीं करना है।
1: आपके सामने तो ये लोग ऐसा नहीं करेंगे।
0: आप सब लोग सामने आइए और एक दूसरे से हाथ मिलाइए। यदि आप लोग सच्चे दिल से कहते हैं कि बाबा के जाने पर सब हिल मिलकर रहेंगे, तो आइए आइए और हाथ मिलाइए।
3: सब 2 मिनट के लिए मौन और स्तब्ध। संत के स्पर्श के बिना रूढ़ी श्रृंखला टूटना नहीं चाहती थी। विनोबा उठे और एक हरिजन भाई का हाथ पकड़कर गांव के सवर्ण भाई के हाथ से मिलाया। रूढ़ी जंजीर पर प्रहार हो चुका था, वो श्रृंखला कमजोर हो गई थी। लोगों ने कहा, ये लोग साफ सुथरे रहेंगे, मांस नहीं खाएंगे तो हमें कोई उर्ज नहीं है।
0: आपके घर में बिल्ली आती है ना, वह क्या खाती है? चूहा खाती है, तो भी आप उसे अपने घर में आने देते हैं? ये बात ठीक है कि सफाई रहनी चाहिए, परंतु ऊपर ऊपर की सफाई का इतना महत्व तो नहीं है जितना महत्व तो अंदर की सफाई का है। ऊपर से साफ सुथरे कपड़े पहनने वाले लोग भी झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं। हरिजन भाइयों, अब तुम लोग डरो मत, साफ रहना। अब तुम नए घरों में रहने के लिए आ जाओ।
3: भेद मिट गया, हरिजनों का वहां आकर रहना तय हुआ। इतने में बाबा के भोजन का समय हो गया। जय भाई ने दही की कटोरी उनके हाथ में रखी। दही का चम्मच मुंह में रखते हुए बाबा बोले,
0: देखिए भाइयों, मैंने अभी इस हरिजन को स्पर्श किया है और मैं खाने को बैठा हूं। अब मैं नरक में जाऊंगा और आप लोग स्वर्ग में जाएंगे। जहां कुछ लोग डोली में बैठते हैं और कुछ लोग उसे उठाते हैं, ऐसी असमानता वाली जगह स्वर्ग हो तो भी विनोबा को वह पसंद नहीं है।
3: उस गांव के एक भाई अपनी सारी 30 एकड़ जमीन दान करने आए थे, परंतु बाबा ने उनमें से थोड़ी सी रखी और बाकी की जमीन उन्हीं को लौटा दी। बड़े भाई का पुण्य कार्य छोटे भाई उस भाई की लड़की में भी जागा और दान पत्रों के साथ उस परिवार ने विनोबा के चरणों में तिरुक्कुरल, भागवत, रामायण और दिव्य प्रबंध के धर्म ग्रंथ भी रख दिए।